बिचारे गावन तुदनो जति सती संतोखी गावन तुदनो वीर करारे गावन तुदनो पंडित पढ़न रखी सर जुग जुग वेदा नाले गावन तुदनो मोहनिया मन मोहन सुरग मछ पै आले गावन तुदनो रतने उपाय तेरे आठ सठ तीर्थ

दोहरा नेत्र तोंके चरण तारु सतद्रव तीर्थ रंग श्री भगवत पूरण की ओर रंग बुर कथा प्रसंग दोहरा।

निज घर वासा होए बेशुमार अथा अगणत अतुल ज्यों बुलाव हो त्यों नानक दास बोले जी ज्यों बुलावो त्यों नानक दास बोले सतनाम धन वाहे गुरु जी राग आसा महला तीजा पट्टी एक ओंकार सतगुर प्रसाद

क्यों? क्योंकि पाछे कछू ना होएगो जो सर पर आवे काल। जदों सिर ते काल आके कुकिया फिर की करेगा। इसलिए जब लग जरा रोग नहीं आया, जब लग काल ग्रसी नहीं काया, जब लग बिकल पई नहीं बानी। आ हुणे बचन आया सी ना, वे जे वा बचन शुद्ध नहीं उचरा है। हुण रसना तो उचारण कुछ होर हुंदा है ते हुंदा कुछ होर है, तब रे धर्म की आस करे। जब लग जरा रोग नहीं आया, जरा भी बीमारी है ना गुरमुखो। जब लग काल ग्रसी नहीं काया, मौत दे आउण तो पहला पहला। जब लग बिकल पई नहीं बानी, तेरा उचारण शुद्ध है। भज लै रे मन सारंग पाणी, फिर दुरा के तरस करदे ने महाराज। अब ना भजस भजस कब पाई, आवे अंत ना भजया जाई। इसलिए भजो गोबिंद भूल मत जाहो, मानस जन्म का एही लाहो। कबीर काल काल करंता अभय कर, अब करता सोए ताल, पाछे कछु ना होएगो जो सर पर आवे काल। अच्छा, असी आलस कर जाने हैं भी कोनी कल नू शुरू करांगे। आलस बाणी जदो असी पढ़ने ते सच्चे पातशाह कहिंदे मन आलसिया उलंघाणा। आलस नू सब तो वड्डा, अजे फलाणा मेरा विरोधी है, फलाणा मेरा दुश्मन है, फलाणा। हजूर कहिंदे आलस सब तो वड्डा तेरा विरोधी है। उदम करेंदिया जियो तू, कमावंदिया सुख पहुंच, ध्यानदिया तू प्रभु मिल नानक उतरी चिन्ह। तुसी आलसी की कहानी सुनी है ना, सारा परिवार ही आलसियां दा। सर्दियां दी रुत बड़ी ठंड पवे ते उन्होंने बत्ती बजाण दी वारी बद्धी होई सी, रजाई चो निकलना बड़ा औखा है, वारी नाल बत्ती बजांगे। हुण अज धी दी वारी, उन्हें उठ के बजा दी, कल नूं पुत्तर दी है, इस्त्री दी है, वारी घर दे मालक दी आ गई। कहन लगे जी अज तुहाडी वारी है, उठ के बत्ती बजाओ। उदों दीवे हुंदे सन ते उह कहन लगा भी पहाड़ा वाली माता बई अज मेरी वारी है, ते जे तू कृपा करें भी तू बत्ती बजा देना ते मैं परिवार समेत तेरे दर्शन करना आवांगा। वह कुदरती पतंगा उहदे विच वज्जा ते बत्ती बुझ गई। वह घर वाली आखन लगी भी अपनी वारी माता कोलों बत्ती बुझा लईए ते सानू भी पहाड़ां दे विच नाल खिंचेगा। वह कहन लगा तू फिक्र ना कर, माता नूं पता है जिहड़ा उठ के बत्ती नहीं बुझा सकदा परिवार नूं लैके पहाड़ां ते कित्थों आ जाएगा। चिंता ना कर, मेरा काम हो गया। तो आलसियां दियां बड़ियां बड़ियां कहानियां ने। सानू हजूर ने उद्यमी बन दा उपदेश दिता है बई तू हंबड़ा मार, पर असी आम तौर ते वेसलापन की करने आ। आज करे सो कल कर, कल करे सो परसों, इतनी जल्दी क्या है प्यारे, जब जीना है बरसों। अजे ते बड़ा जीना है, इनी काली करन दी की लोड़ है। हजूर कहिंदे ने नहीं, नै बिलंब धर्मं बिलंब पापं। भाई गुरमुखा, कोई पाप करन दा विचार मन च आया ते उनू डिले कर दे, हो सकदा तेरा मन बदल जाए। पर जे कोई चंगा काम करन दा मन बनिया है फिर उनू कल ते ना पा, हो सकदा कल नू तेरा मन ही ना करे चंगा काम करन ते। इस वास्ते सतगुरु सच्चे पातशाह बख्शिश कर रहे ने, भाई ए वेला ना लै सै मूड़े, फिर तू जम कै वस पड़िया। खिमा करना, फिर तू जम कै वस पिया। जम कै वस पिया मतलब जन्म मरण दे गेड़ विच पै गया। इस वास्ते इहदे विच पवित्र उपदेश है समें दी संभाल और जीवन मनोरथ नू समझना, भी तेरे जीवन दा जेड़ा मनोरथ है। वह वारी आई आ मूड़े, और वह मनोरथ ये भी वास देव तुद विसरिया, जेड़ा वास देव विसरिया वह विसरना नहीं सी चाहिदा। आ पलके शेख साहब की याद विच परिवारां वल्लों समागम शुरू होने ने,

वाहिगुरु एक ओंकार श्री वाहिगुरु जी की फतेह। श्री भगवती जी सहाय वार। श्री भगवती जी की पातशाही दसवीं प्रथम भगवती सिमर कै गुरु नानक लेई तिहाई।

नासी पुरख पाया परमेश्वर वो सोब खंड ब्रह्मंडाहे। हम गरीब मस्कीन प्रभ तेरे हर आख राख वड वड्डाहे। जन नानक नाम आधार टेक है हर नामे ही सुख मंडाहे। राग गौड़ी पूर्वी महला पंजवा करो बिनती सुनो मेरे मीता संत टैल की बेला। यहाँ खाड़ चलो हर लाहा या गै बसन सहेला। औद कटे दिन सुरे नारे मन गुर मिलका सुवारे रहाओ। एहो संसार विकार संसे में तरियो ब्रह्म ज्ञानी। जिसे जगाए पिया वह हो रस अकत कथा तिन जानी। जाको आए सोई बिहज हर गुरते मने बसेरा। निज घर महल पाओ सुख सहजे बहुर।

गै मुख कर संतन की तूरे। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। तुद आ गया।

तेरे तुमरी कृपा में सुकने रे। कोई ना जाने तुमरा अंत ऊंचे ते ऊंचा भगवंत, सगल समग्री तुमरा सूत्र धारी, तुम ते वह सु आज्ञाकारी।

अष्टपदे दस वस्तु ले पाछे पावे एक बस्त कान बिखोट गवावे एक बीना दे दस भी हिरले तो मूड़ा कहो कहां करे जिस ठाकुर से नाही चारा ताको की जाए सद नमस्कारा जाके मन लागा ब्रह्म मीठा सर्व सुख ताहू मन उठा जिस जन अपना हुकम मनाया सर्व थोक नानक तिन पाया अगंध सापनी दे रास खात भी भरत खात भीत भरत अणदुलास अपनी अमान कच बहोर शारे अज्ञानी मन रोस करे अपनी प्रतीता भी खोवे बहुर उसका विश्वास न होवे जिसकी बस आगे राखे प्रभु की आज्ञा माने माथे उसते चौगन करे निहाल नानक साहिब सदा दयाल अनक भांत माया के हेत सर्व रहोवत जान अनेद बिरखी छाया सुरंग लाभ बिन से ओ मन पछतावे जो दिसै सो चालन हाल लपट रहो ते अंध अंधार बटाऊ स्यो जो लावे नहीं तागु हाथ न आवे के मन हर के नाम की बड़ी सुखदाई कर कृपा नान गाव लय लाई मिथ्या तन धन गुटम सबाया मिथ्या होमे ममता माया मिथ्या राज ओबन धन माल मिथ्या काम क्रोध विकरार मिथ्या रथ हस्ती अश्व वस्त्रा मिथ्या रंग संग माया पे खस्ता मिथ्या त्रो मोह अभिमान मिथ्या सुप्रकृत गुमान अस्थिर भगत साध की शरण नानक जब जब जीवे हर के चरण मिथ्या सरवण सरवण पर निंदा सुनह मिथ्या स्पर द्रव को हिरे मिथ्या नेत्र बेखत पार तिर पाद मिथ्या रसना भोजन अनुस्वाद मिथ्या चरण पर विकार को ताप मिथ्या मन पर लोभ लुभावे मिथ्या तन नहीं पार बुकारा मिथ्या बास ले बेकारा बिन बुझे मिथ्या सब पे सफल दे नानक हर हर नाम ले बिरथी सागत की आर जा साज बना के हो सुच्छा बिरथा नाम बिना धन अंध मुखा बता के दुर्गंध बिन सिमरन दिन रैन ब्रेथा बिहाय मेघ बिना जो खेती जाए गोविंद भजन मिन मृथे सब काम जो कृपन के निरार

अष्टपदी दे प्रसाद शती अमृत खाहे तस ठाकुर को रख मन माहे दे प्रसाद सुगंध तन लावे तुसको सिमरत परमगत पावे दे प्रसाद बसे सुख मंदर तसे त्याय सदा मनंदर दे प्रसाद ग्रह संग सुख बसना आठ पहर सिमरो तस रसना दे प्रसाद रंग रस भोग नानक सदा त्याय ध्यावन जोग जे प्रसाद पाठ पटंबर हंडावे तसे त्याग तब्र लुभावे जे प्रसाद सुख सेज सोईज मनाड पहर ताका जस गावीज जे प्रसाद तुसब कऊ मान मुक्ता को जस रसन बखाने जे प्रसाद तेरो रहता धर्म मन सदा त्याहे केवल पार ब्रह्म प्रभ जी जब दरगे बान पावे नानक पत सेती कर जावे जे प्रसाद आरोग कंचन देही लिवलावत सराम सनेही जे प्रसाद तेरा उल्ला रहत मन सुख पावे हर हर जस कहत जे प्रसाद तेरे सगल शिद्र ठाके मन सरनी पर ठाकुर प्रभ ताके जे प्रसाद तुझको ना बहुचे मन सास सास सिमरो प्रभ उचे जे प्रसाद पाई दुर्लभ दे नानक ताकी भगत करे हे जे प्रसाद आ भूखन पहरी जय मन तिस सिमरत क्यों आल सुखी जय जे प्रसाद असव हस्त सवारी मन तिस प्रभ को कबू ना बिसारी जे प्रसाद बाग मिलख तना राग प्रोय प्रभ अपने मना जिन तेरी मन बनत बनाई उठत बैठ सत से त्याई तिसे त्याय जो एक अलख है इहा उहा नानक तेरी रख है जे प्रसाद करे पुन बहुदान मना आठ पैर कर तुसका ध्यान जे प्रसाद तुम आचार व्यवहारी तिस प्रभ को सा सा चितारी जे प्रसाद तेरा सुंदर रूप सो प्रभ सिमरो सदा अनूप जे प्रसाद तेरी निकी जात सो प्रभ सिमर सदा दिन रात जे प्रसाद तेरी पत्रा है गुर प्रसाद नानक जस कह जे प्रसाद सुने करण नाद जे प्रसाद वेखे बिस्माद जे प्रसाद बोले अमृत रसना जे प्रसाद सुख सहजे बसना जे प्रसाद अस कर चले जे प्रसाद संपूर्ण फले जे प्रसाद परमगत पावे जे प्रसाद सुख सह समावे ऐसा प्रभु त्याग बरकत लागो गुर प्रसाद नानक मन जागो जे प्रसाद तू प्रगट संसार तिस प्रभु को मूल ना मनो विसार जे प्रसाद तेरा प्रताप रे मन मूर्त ताको जाप जे प्रसाद तेरे कार्य पूरे तिसे जान मन सदा हजूरे जे प्रसाद तू पावे साज रे मन मेरे तू ता शिवराज जे प्रसाद सबकी गत होए नानक जाप जपा जप सोए आप जपाए जपा सो नाहो आप गावाए सो हर गुण गाओ प्रभु कृपा दे हुए प्रकाश प्रभु दयाते कमल विकास प्रभ सुप्रसन्न बस मन सोए प्रभ दयाते मत उत्तम होए सर्वधान प्रभ तेरी मया भोग शूना किन्हु लया जित जित लाभो तत लगे हर नाथ नानक इनका कशूना हाथ सरोक अगम अगाध पार ब्रह्म सोए जो जो कह सो मुक्ता होए सुनमिता नानक बिनवंता साध जना की आचर्य कथा अष्टपदी साधक संग मुखु जल होत साध संग मन सगरी खोत साधक संग मिटे बिमान साधक संग प्रगटा सुगयान साधक संग विजय प्रभ नेरा साध संग सब होत नबेरा साधक संग पाय नाम रतन साधक संग एक ब्रजतन साध की महिमा बरने कौन परानी नानक साध की शोभा ब्रह्म है समानी साधक संग अगोचर मिलाय साधक संग सदा प्रफुलाय साधक संग आवे बस पंचा साध संग अमृत रस पंचा साध संग हुए सबकी रेन साधक संग मनोहर बैन साधक संग न कतु तावे साध संग अस्तित्व मन पावे साधक संग माया ते पिन साध संग नानक प्रभ सुप्रसन्न साध संग दुश्मन समीत साधु के संग महापनीत साध संग सेव नहीं बैर साधक संग ना बिंगा पैर साधक संग ना ही घमंदा साध संग जाने परमानंदा साधक संग नाई हो ताब साधक संग तजे सभ्या वैफे जाने साध बढ़ाई नानक साध प्रभु बन आई साधक संग ना कबू ताब साधक संग सदा सुख पावे साध संग बस अगोचर लह साधु कै संग आजार सहाय साधक संग बसे तान उचे साधु कै संग महल पहुंचे साधक संग दृढ़ सब धर्म साधक संग केवल पार ब्रह्म साधक संग पाए राम निधान नानक साधु कै कुर्बान साधक संग सब कुल उदार है साध संग साजन मीत कुटाम निस्तार है साधु कै संग सो धन बावे जिस धनते सबको प्रसाव है साध संग धर्म राय करे सेवा साधक संग शोभा सुरदेवा साधु कै संग पाप पलायन साध संग अमृत गुण गायन साधक संग सर्वधान गम नानक साधक संग सबल जन्म साधक संग नही कशकार दर्शन भेट तो होत निहार साधक संग कलुकत हरै साधक संग नरक पर हरै साधक संग इहा उहा सोहेला साध संग बिछरत मेला जो इच्छा सोई फल पावै साधक संग न बिरथा जावे पार ब्रह्म साधरद बसै नानक उदरै साध सुन रसै साधक संग सुनो हर डाऊ
सासंग हर के गुण गाओ, साधक संग न मंते बिसराय, सासंग सर पर निस्तराय, साधक संग लगे पर मीठा, साधु कह संग घट गए ठीठा, सासंग भया गया गारी, सासंगत भई हमारी, साधक संग मिटे सब रोग, नानक साध बेटे संजोग, साध की महिमा वेदना जाने, जेता सुने तेता बखियाने, साधु की उपमा तेह गुण ते दूर, साधु की उपमा रही भरपूर, साधु की शोभा का नाही अंत, साधु की शोभा सदा बेअंत, साधु की शोभा ऊंचते ऊंची, साधु की शोभा मूंछते मुची, साधु की शोभा साध बन आई, नानक साध प्रभेद न पाई सरोक, मन साचा मुख साचा सोए, अमर न पेख एक बिन कोए, नानके लक्षण ब्रह्म ज्ञानी होए। अष्टपदी। ब्रह्म ज्ञानी सदा निर्लेप, जैसे जल में कमल अलेप, ब्रह्म ज्ञानी सदा निर्दोख, जैसे सूर सर्व को सोख, ब्रह्म ज्ञानी का दृश्यमान, जैसे राज रंग को लागे तुल पवान, ब्रह्म ज्ञानी का तीर्ज एक, जो वसुदा कऊ खोदा कऊ चंदन लेप, ब्रह्म ज्ञानी का यह गुनाव, नानक जो पावक का सह स्वभाव, ब्रह्म ज्ञानी निर्मल ते निर्मला, जैसे भैला लागे जला, ब्रह्म ज्ञानी के मानो प्रकाश, जैसे तरु प्रयाकाश, ब्रह्म ज्ञानी के मित्र सतर समान, ब्रह्म ज्ञानी के राह अभिमान, ब्रह्म ज्ञानी ऊंचते ऊंचा मन अपना सप्ते नीचा, ब्रह्म ज्ञानी सेजन भय नानक जिन पर व्याप करे, ब्रह्म ज्ञानी सगल की रीना तमरस, ब्रह्म ज्ञानी चीता ब्रह्म ज्ञानी की सब पर माया, ब्रह्म ज्ञानी ते कछ बुरा न पया, ब्रह्म ज्ञानी सदा समदर्शी, ब्रह्म ज्ञानी की दृष्ट अमृत वर्षी, ब्रह्म ज्ञानी बंधन ते मुक्ता, ब्रह्म ज्ञानी की निर्मल ज्योता, ब्रह्म ज्ञानी का भोजन ज्ञान, नानक ब्रह्म ज्ञानी का ब्रह्म ध्यान,

ज्ञानी का दर्श बड़भागी पाइया, ब्रह्म ज्ञानी को बल बल जाइए, ब्रह्म ज्ञानी को खोजे में सर। नानक ब्रह्म ज्ञानी या परमेश्वर, ब्रह्म ज्ञानी की कीमत ना है, ब्रह्म ज्ञानी का सगल मनमा है।

जो जो जपे तस्की गत हुए सास संग पावे जनक हुए कर कृपा अंतर उतारे पास प्रेत मुक्त पात्र को तार है सर्वरो का अवगत नाम कल्याण रूप मंगल गुण गाम कहूँ जुगत के तेना पाई है धर्म नान।

अष्टपदी मानु कीट एक प्रीति सब जान देवन को एक भगवान जिसके दिए अगाए पौर्ण दर्शना लागे आए मारे राखे एक हुआ मानु कह कृष्णाई हाथ जिसका हुक्म भू सुख हो जिसका नाम रा कंठ परोहे सिमर सिमर सिमर प्रभ सोए नानक बिघन न लागे कोई उस्तत मन में कर निरंकार कर मन मेरे सदव्यवहार।

नाना रूप नाना जाके रंग नाना पे कर एक रंग नाना विद किन्नो विस्तार प्रभ बनासी एक अंकार नाना चलत करे कर वाहे पूरे पूर्ण सब ठाए नाना विद कर बंत बनाई अपनी कीमत आपे भाई सब गढ़ तिसके सब तिसके ठाओ जब जब जीवे नान घर नाओ नाम के तारे सगले जंद नाम के तारे खंड ब्रह्मांड नाम के तारे सिमृत वेद पुराण नाम के धारे सुनन ज्ञान ध्यान नाम के धारे आकाश पाताल नाम के धारे सगल आकार नाम के धारे पुरिया सब पवन नाम के संग उदरे सुन श्रवण कर कृपा सबने नाम लाए नानक चौथे पद में सो जन गद पाए रूप सत जाका सत स्थान पुरख सत केवल प्रधान करतूत सत सत जाकी बाणी सत पुरख सब माहे समाणी सत कर्म जाकी रचना सत मूल सत सत उत्पात सत करणी निर्मल निर्मली जिसे बुझाए ते से सब भली सतनाम प्रभ का सुखदाई विश्वास सतनान गुरते पाई सत भजन साधु उपदेश सत जन जाग हृदय प्रवेश सत निरत बुझे जय कोए नाम जब ताकी गत होए आप सत किया सब साते आपे जाने अपनी मित गत जिसकी सृट सो करने हार बरना बूझ करत विचार करते कीमित ना जाने किया नानक जो तस भावे सो भरतिया।

दर्शक होए मन भिक्षे साध चरण धोए भक्त जना के मंत्रंग बिरला को पावे संग एक बस्त दीजे कर मया गुर प्रसाद नाम जप लया ताकि मां कही ना जाए नानक रहया सर्व समाए प्रभ शांत दीन दयाल भगत।

अवतार। जब निर्गुण प्रभु साहेब स्वभाव है तब शिव शगत कहो गिदठाए। जब आप ही आप अपनी जो धराए तब कमन ने डर कमन का डराए। अपन चलता आप करने हार नानक ठाकुर अगम अपार। अविनाशी सुख आपन आसन तय जन्म मरण कहो कहा विनाशन। जब पूर्ण करता प्रभु सोए तब जिम जम की त्रास कहो किसोए। जब अवगत अगोचर प्रभ एका तब चित्रगुप्त किस पूछत लेखा। जब नाथ निरंजन अगोचर अगाधे तब गौण छुटे गौण बंधन बाधे। अपने आप ये चर्जा नानक आपन रूप आप ही ऊपर जा। जय निर्मल पुरख पुरख पा धोता तय बिन मैल कहो क्या धोता। जय निरंजन निरंकार निर्वाण तय कौन को मान कौन अभिमान। जय स्वरूप केवल जगदीश तय शल छेदर लगत कौ कीस। जय जो स्वरूपी जो संग समाव तय किसे भू का मंदिर बताव। कर्ण ग्रामन करने हार नानक करते का नाहे सुमार। जब अपनी शोभा आपन संग मनाई तब कमन माए बाप मित्र सुत पाई। जय सर्व कलापे प्रवीण तय वेद गेव कह कऊ चीन। जब अपने आप आवरतारे तो शगन अब शगन कहाँ विचार है। जे अपनू जब अपना आप नेरा तो कौन ठाकुर कौन कही है चेरा। विस्मन विस्मरा।

अपन खेला अवगर देखे गैल संकोच चेतो नानक के। जय अवगत भगत आप जय बसरे पासार संत प्रताप दो पाका आपे धनी उनकी शोभा उन्हों बही बनी आपे कौतक करे आनंद चो जा पे रस भोग।

गाओ प्राण तरन का इहा सवाहो आठ पहर प्रपेखो नेरा मिटे अज्ञान भिनसे अंधेरा सुन उपदेश हृदय बसावो मन छे नानक फल पावो हालत पल द्वेर सवार राम नाम अंतर उद्धार पूरे गुरु की पूरी दिखिया जिसमन बसे तिसाज परिख्या मंथन नाम जपो लिवलाहे दुख दर्द मंते भाओ हो जाए सच।

जो जानेत सदा सुख भया मिला लाए प्रभ सोयो तनवंत कुलवंत पतवंत जीवन मुक्ति सिद भगवंत धन धन धन जन आया जिस प्रसाद सब जगत राया जनावन का यह स्वभाव जन के संग चित आवे नाव।

अष्टपदे उरे गुरु का सुन उपदेश पार ब्रह्म निकट कर पेख सा सिमरो गोबिंद मन अंतर की उतरा चिंद आस अनित त्यागो तरंग संजना की दूर मन मंग आप छोड़ बेंती करहो सासंग अग्न सागर तरो हर धन के पर लिहो भंडार नानक गुरु पूरे नमस्कार खेम कुशल सहज आनंद सासंग पाज परमानंद।

शरणानुगतेयाय जिस मन बसे सुने लाय प्रीत तजन आवे हर प्रभु चीत जन्म मरण तागा दुख निवारा दुराव दे तत्काल उदार निर्मल शोभा अमरता की बानी

तीर्थ नावा जेत सुभावा विण पाने के नाय करी जेति सिरठ उपाही वेखा विण कर्मा के मिलै लई मत विच रतन जवाहर मानक जेक गुर की सिख सुनी

मन की गद कहीं न जाए, जे को कहे पिछे पछताए, कागद कलम न लिखन हार, मन का बह करन विचार। ऐसा नाम निरंजन होए, जे को मन जाने मन कोए, मन सुरत हुए मन बुद्ध, मन सगल पवन की सुध।

तदनिंकार असंख्य जाप असंख्य भाव असंख्य पूजा असंख्य तप ताव असंख्य ग्रंथ मुख वेद पाठ असंख्य जोग मन रह उदास असंख्य भगत गुण ज्ञान विचार असंख सती असंख दातार असंख सूर मोह पक्षार

भगता सर्वं जगता सर्वं देवं सर्वं पेवं सर्वं काले सर्वं पाले रुआल शांत व प्रसाद आद रूप अनाद मूर्त अजोन पुरखे अपार सर्व महान त्रिमान देव अपेव आदि उदार सर्व पालक सर्व कालक सर्व कोपन काल जतर ततर बिराज ही अवतूत रूप रिसाल नाम ठाम न जात जाग करे रूप रंग न रेख आद पुरख उदार मूर्त अजोन आद असेख

अलिश्य कर्म दृश्य धर्म सर्वा प्रणाढ़ अंडड़ भाढ़ चाचरी शांत वय प्रसाद गोबिंदे मुकंदे उदारे अपारे हरियंग करियंग ने नामे कामे पजहंग प्रयाशंद चतर चक्र करता चतर चक्र हरता चतर चक्र दाने चतर चक्र जाने चतर चक्र वर्ती चतर चक्र परती चतर चक्र पाले चतर चक्र काले चतर चक्र पासे चतर चक्र वासे चतर

है पवित्राय परथी से अधि से अदृश्य अकृष्य भगवती शांत वै प्रसाद कहते के अछेज देसे के अभिज भेसे के अगंज करमे के अभंज भरमे के अभिज लोक कै के अदित सोक कै के अवतूत वर्ण के विभूत करने के राजंग प्रवाह के धर्मंग तुझा है

के सर्व अंग दली है, के सर्वत्र मान्य है, के सर्वत्र धान्य है, के सर्वत्र गहन है, के सर्वत्र पहन है, के सर्वत्र देश है, के सर्वत्र पेश है, के सर्वत्र राज है, के सर्वत्र साज है, के सर्वत्र दीन है, के सर्वत्र लीन है, के सर्वत्र जाहो, के सर्वत्र पाहो, के सर्वत्र देश है, के सर्वत्र पेश है, के सर्वत्र काल है, के सर्वत्र पाल है,

पातै निरसागन श्री कहें अमितौमी कहें सदैवं प्रवाहें अजय हैं अजा हैं भगवती शांत वह प्रसाद के जाहर जहूर है के हाजर जहूर है हमेशा सलाम है।

तौ विबुद्ध हैं, के अमितौ पसा हैं, के आतं प्रभा हैं, के अचलं नांग हैं, के मितौ भांग हैं। बाद पहर शांत वह प्रसाद मोन मान प्रणाम गुण गण मुदाम हर भर गांज हर नर पर भांज हन गण प्रणाम मोन मान सलाम हर नर अखंड वर नर अमांड अनुपनास मोन मान प्रकाश गुण गण प्रणाम जल थल मदाम अन सिंह अंग आसने भंग उपमा पार गत में ते उदार जल थल अमांड देश वे से अभंड जल थल महंत देश वे सुबेअंत अनुपनास त्रित तर तुरास

मूढ़ सुरार्दन सुध सुधाधक संत समूह नेक मति के सारे देश को देख रहे हो मत को न देखियत प्राणपति के श्री भगवान की।

संसार एक रूपे अनूप स्वरूप रंग पहो राव कहीं भूपा हंडित जे रज से तजकीनी उत्पुज खान बहुर राज दीनी कहूं फूल राजा हवै बैठा कहूं सिमिट पहो संकर ई कैठा सिगरी सृष्टि दिखाए अचंपव आद जुगाद स्वरूप स्वयंपव अब रक्षा मेरी तुम करो सिख उबारे सिख संग्रह दुष्ट जिते उठवत उत्पाता सकल मिलेश करो रन कहता जे अज तुह तब सरनी परे तिनके दुष्ट दुख तुह मरे

पाई। संबद सत्रह सहस पर निजह अर्ध सहस पौन तीन कह जय भाद्रव सुदी अष्टमी रव बारा तीरस तद्रव ग्रंथ सुधारा सवैया।

नानक सुनह संतो शब्द धरो पिहारो सात्यानाम मिराया दारो वाजे पंच शब्द तिद कर सुभागै कर सुभागै शब्द वाजे कला जित कर तारिया पंच दूत तुद वास कीते काल कंठ कुमारिया तुर कर्म पाया तुद जन कौ से नाम हर के लागे कहे नानक तै सुख होआ तित कर अनहद वाजे साची लेवै बिन देहे नुमानी देहे नुमानी लेवै बाझो क्या करे बेचारिया तुद बाज समराथ।

Rudy. बाणी गुरु गुरु है बाणी विच बाणी अमृत सारे गोर बाणी कह सेवक जन मन प्रतख गुरु निस्तारे।

रसियन महराता सूरन मैं सूरा तू कहियह भोगन मैं भोगी ग्रस्तन मैं तू बड़ो ग्रिस्ती जोगन मैं जोगी करतन मैं तू करता कहियह है।

लखमी के तक गनी न जाइए, गण ना सको सीका। नामन मह तेरो प्रभ नामा, ज्ञानन मह ज्ञानी। जुगतन मैं तेरी प्रभ जुगता, इस नानन मैं इस नानी।

नानक जस गायो जो प्रभ की अत प्यारी ज्यों बुलावे त्यों बोलै स्वामी।

इस वास्ते गुरु साहिबान ने भावे अपने ही मन नूं संबोधन करके बचन कीते पर उहदे विच साडे वास्ते भी यह शुभ उपदेश है कि वाहिगुरु जी भोले पा दे उत्ते रीज दे ने होशियारियां चालाकियां ते नहीं अपनी अकल दिया सियाणपां नाल उन्नू रिजाया नहीं जा सकता पर चंचल मन कई बार इस तरह दिया होशियारियां करन दिया भी कोशिशां करदा मैं बहुत सियाणा हाँ बहुत अकलमंद हाँ मैं बड़ा विद्वान हाँ दूजे ते ऐवें ही हन इसलिए मैं प्राप्त कर लांगा ये रह जाणगे। हजूर फरमान करदे हन ये मन चंचला चतुराई किने ना पाया फिर दोहरा के कहिंदे ने चतुराई ना पाया किने तू सुन मन मेरिया ए मेरे मन तू इस गल वल तवज्जो दे ध्यान दे तेरे भले वास्ते तेनू शुभ उपदेश दिता जा रहा है चालाकियां सियाणपां चतुराई सियाणपां किते कम ना आई है चतुराई ना पाया किने तू सुन मन मेरिया ए माया मोहनी जिन एत भरम भुलाया माया ता मोहनी तिने कीती जिन ठगौली पाया कह नानक मन चंचल चतुराई किने ना पाया। पिता मेरो बड़ो धनी अगमा हे पिता जी तुसी साडे मालक हो साडी सियाणप दी तुहाडे तक पहुंच नहीं हो सकती इस वास्ते बाणीकारा ने सानू वार वार सेध दित्ती भी की करना है ते की नहीं करना इस भाव दे बचन भगत कबीर जी ने उचारण कीते क्या जप क्या तप क्या व्रत पूजा जा कै हृदय भाओ है दूजा रे जन मन माधो स्यों लाइये चतुराई ना चतर पुज पाइये ये मन सिमरन करन नाल परमात्मा प्राप्त हुंदा है सियाणपां वर्तन नाल परमात्मा प्राप्त नहीं हुंदा क्योंकि साडियां सियाणपां दी उत्थों तक पहुंच नहीं है। इस वास्ते जे सिमरन नहीं कीता ते सियाणपां नाल फिर कीते हुए जप कीते हुए तप ते रखे हुए वर्त तथा कथित पूजा जदों तक सुरत विच एक अकाल पुरख वाहिगुरु नूं छड के किसे होर जानदार जां बेजान पदार्थ विच साडी खिच बनी हुई है उदों तक दूजे भाव दे अधीन रहा यह कीते हुए जप तप व्रत पूजा निरार्थक कर्म बन के रह जाते हैं। इसलिए रे जन मन माधो स्यों लाइये सुरत विच शब्द नूं वसाना चाहिदा है नाम जपना चाहिदा है चतुराई ना चतुर पुज पाई है सियाणपां नाल चतुर भुज कहिए अकाल पुरख नूं प्राप्त नहीं कीता जा सकता।

अगम उस्तत कवन करी जय करते पेख रहे बिस्मार हाउ सुखियन मैं सुखिया तू कही अह दातन सिर दाता तेजन मह तेज वंशी कही अह रसियन मह राता सूरन मह सूरा तू कही अह भोगन मैं भोगी

रहाउ। जो चाहत सोई मन पायो, कर कृपा हर नाम दिवायो। सर्व सुख हर नाम वडाई, गुर प्रसाद नानक मत पाई। राग तलंग महला पहला, घर पहला एक ओंकार। सतनाम करता पुरख निरभउ निरवैर, अकाल मूरत आजुनी सह भंग। गुर प्रसाद जक अर्ज गुफ्तम पीस, तौ दर गोस कुन करतार। हका कबीर करीम तू बैब परवदगार, दुनिया मुकामे फानी। तहकीक दिल दानी, मम सर मुए अजराइल। गिरफ तय

दीवाना भया तीत कर कासा दर्शन की भूख मैं दर मांगो नीता नीता तौ दर्शन की करो सुमाय मैं दर मांगत भीखे आ पाए राम केसर कुसुम मृग मै हर नाम सर्ब शरीरी चढ़ना चंदन भगतान जो तिन ही सर्ब परमल करना पाट भांडा कहे न कोई ऐसा भगत वरण मैं हो तेरे नाम नमै रहे लिवलाए नानक तिन दर भीखे आ पाए तलंग महला पहला घर तीजा एक ओंकार सतगुर प्रसाद यो तन माया पाया प्यारे लीतड़ा लाभ रंगाए मेरे कंत नाम पावे चोलड़ा प्यारे क्यों तन सिजै जाए हाओ कुर्बानी जाओ मेहरबाना हाओ कुर्बानी जाओ

जी सगल को दे दान रहाउ। तू काहे डोले प्राणिया, तुद राखेगा सृजनहार, जिन पदाइस तू किया सोई दे आधार, जिन उपाई मेदनी सोई करदा सार, कट कट मालक दिलां का सच्चा परवदगार, कुदरत कीम ना जानिए वड्डा बेपरवाह, कर बंदे तू बंदगी जिचर घट मैं साहो, तू समरथ आकथ अगोचर, जियो पिंड तेरी रास, रहम तेरी सुख पाया सदा, नानक की अरदास। तलंग महला पंजवां घर तीजा।

संपत रथ धन राज स्यों अत नेहो लगायो काल फास जब गल परी तब काल फास जब गल परी सब भयो परायो जानबूझ कै भावरे

पाप करत सुख चयो नही नह गर्भ निवार्यो। जेह बिद गुरे उपदेसिया सो सुन रे पाई, नानक कहत पुकार कह गहो प्रभ शरणाई। तलंग बाणी भगतां की कबीर जी एक ओंकार, सतगुर प्रसाद बेद कते विफतरा पाई, दिल का फिक्र न जाए टुक दम करारी। जो करो हाजर हजूर खुदाए, बंदे खोज दिल हर रोज, ना फिर परेशानी माहे। ए जो दुनिया सिर मिला दस्तगीरी नाहे राव। रोग पढ़ पढ़ खुशी होए बेखबर बाद बकाहे, हक सच खालक खलक म्याने स्याम मूर्त नाहे। इसमान माने लहंग दरिया गुसल कर दन बूंद, कर फकर दायम लाए चश्मे जय तहां मौजूद।

हुए निरास जमावहु। जपो ताए को नामा, जपो ताए को नामा, वर निराफल कामा रहाउ। एव मन इटी हाथ करो, फुन नेत्रों नींद न आवे। रसना नाम जपो तब मथिय, इन बिद अमृत पावहु। मन संपट जेता, सत सरनावन पावन, पाती त्रिपत करे। पूजा प्राण सेवक जे सेवे, इन बिद साहिब रवत रहे। कह दे कह कहे कह जावे, तुम सर अवर न कोई, भगतहीन नानक जन जंप। हौसला ही सच्चा सोई, सूही महला पहला घर दूजा, एक ओंकार सतगुर प्रसाद। अंतर वसै ना बाहर जाए, अमृत छोड़ा काहे भिख खाए। ऐसा ज्ञान जपो मन मेरे, हो वो चाकर साचे केरे रहाउ। ज्ञान त्यान सब कोई रवे, बांधन बांधियां सब जग पवै। सेवा करे सो चाकर होए, जल थल महियल राव रहा सोए। हम नहीं चंगे बुरा नहीं कोए, प्रणवत नानक तारे सोए। सूही महला पहला घर छेवा, एक ओंकार सतगुर प्रसाद। उजल कह चिलकना कुटुम कालड़ी मस, धोत्या जूठ न उतर जे सौ धोवा तिस। सज्जन सेई नाल मैं चलदिया नाल चलाना, जिथे लेखा मंगी तिथे खड़े दसन पौड़ी। कोठे मंडप माड़िया पासों चितविया, टठिया कम नयावनी विचों सखणिया। बग्गा बगे कपड़े तीर्थ मांज वसन, कुट कुट जिया खावने, बगे ना कही आन। सिंबल रुख शरीर मैं जन देख भुलाना, से फल काम ना आवनी, ते गुण मैं तन हन। से फल काम न आवनी, ते गुण मैं तन हन। अंदले भार उठाया डूंगर वाट बहुत, अखी लोड़ी ताला नालहा, हों चढ़ लंगा केत। चाकरिया चुंगे आईया अवर सियान पकेत, नानक नाम समाल तू बद्दा छुटै जेत। सुही महला पहला, जाप ताप का बंद बेड़ला, जित लंग है वाहेला। तू सरवर तू चला ऐसा पंथ सोहेला, तेरा एको नाम मजीठड़ा। रत्ता मेरा चोला साध रंग ढोला रहा,

सुनो बड़ भागी हो सगल मनोरथ पूरे पार ब्रह्म प्रभ पाया उतरे सगल विसूरे दुख रोग संताप तरह सुने सच्ची बाणी संत साजन पै

सिरसर जगसभा हे ठाकुर काहे मन भौ करिया उड़ उड़ आवै सको साथ पाछे बचरे छरिया तिन कवण कलावै कवण चुगावै मन मह चुमरन करिया सब निदान दस वस्तु सिदान ठाकुर कर तल तरिया

एक दाते एक भिखारी जी सब तेरे चोज बिनाणा तू आपे दाता है आपे भुगता जी हूं तुद बिन अवर ना जाना।

नेचर करता सोई तुझे आपे भावे सोई वर्ते जी तू आपे करह सो होई तुझे आपे सिष्ट सब पाई जी तुझे आपे सिरज सब गो

सत्संग काका सुमित अते बच्ची शरण कौर इन्हां बच्चों के आनंद कारज सतगुरु जी की मुबारक गोद विच आरंभ हो जा रहे हैं। सब तो पहला दास एक शब्द ग्रहण करेंगे अरदास वजो कीता लोड़ी है कम सुहर पै आखी है कार्ज देह सवार सतगुर सत साखी है। उस तो बाद भाई साहब जी सूखम अरदास करेंगे जिस विच बच्चा बच्ची बच्चे दे माता पिता ते बच्ची दे माता पिता ये कुल टोटल 6 लोग खड़े होंगे बाकी सारी संगत इस तरह बराजी रहेगी। उस तो उपरंत आपां सतगुरु जी पासों आग्या लेंदे हुए हुक्म लवांगे फिर पल्ले की मर्यादा होगी फिर 4 लावां दे पाठ होंगे मैं नाल नाल एक्सप्लेन करता जावांगा। सो पहला आपां सब तो सतगुरु जी के चरणों में अरदास बेनती कीता लोड़ी है कम सो हर पै आखिए शब्द ग्रहण करिए जी।

सत्संग बच्चा सुमित सैनी, सपुत्र सरदार सुरिंद्रपाल सिंह सैनी, बीबी सतविंदरजीत कौर सैनी, बच्ची शरण संधु, सपुत्री सरदार सरबजीत सिंह संधु, सरदारनी कुलविंदर कौर संधु, इन्हां दोनों बच्चों के सतगुरु जी की हजूरी अंदर सतगुरु जी मुबारक गोद अंदर पूर्ण गुरमर्यादा अनुसार आनंद कार्ज की मर्यादा संपूर्ण हुई है, आनंद कार्ज संपूर्ण होए हैं। असल में है मर्यादा तो असी इन्हू बनाता रसम, बहुत थान तो असं कहने आनंद कार्ज की रस्म कर चले, सत्संग ते रस्म नहीं है। रस्म तो वह है जड़ी होरां धर्मां दी रीति रिवाज अनुसार मनाई जाती, जय माला पा लो जां तुसीं कोर्ट मैरिज जाके रजिस्टर करा लो, भी एक रस्म है। रस्मां ते होर धर्मां दीआं हन, सानू गुरु साहिब जी ने मर्यादा बख्शी है, सतगुरु जी ने चार लावां बख्शियां हन, असल विच इह मर्यादा है। सो बच्चे ते बच्ची दे पूर्ण गुरमर्यादा अनुसार आनंद कार्ज संपूर्ण होए हन। दस रहे वालों दोनों परिवारों नूं बहुत बहुत मुबारक, सतगुरु मेरा आमद करन, बच्चे ते बच्ची नूं गृहस्थ जीवन दे सारे सुख प्रदान करन, अपने दर घर दा प्रेम प्यार ओट आसरा बख्शन, दरों करो नाम दान गुर सिखी जीवन की दात बख्शन, यही अरदास है। सो आओ विया होआ मेरे बाबला, पूरी आसा जी मनसा मेरे राम, दो शब्द आप ग्रहण करके फिर कीर्तन की समाप्ति करांगे। साढ़े बहुत सत्कारयोग भाई जसविंदर सिंह जी लुधियाने वाले, असल में यह ग्रंथी नहीं हैं, सत संगत कथावाचक हैं, इन्हों की ड्यूटी लगी है ग्रंथी सिंह की ड्यूटी निभाउण दी, विद्वान बहुत हैं ते ये बड़े ठहराओ नाल बड़े विश्राम दे के बड़े ढंग नाल इन्होंने पाठ किए हैं। हुक्मनामा साहब भी पूरी तरतीब वाइज पूरा विस्थार पूर्वक लिया है, तो कई बार जो विश्राम सही ना लगन पाठ दे ते फिर अर्थां दे भी अनर्थ बन जाते हैं, अर्थ भी नहीं सही होंगे। तो ये कथावाचक है, इन्हों पता है कितने ठहराओ देना है, कितने अर्ध विश्राम है, कितने फुल विश्राम है, इन्होंने सेवा निभाई है, इन्हों का भी धन्यवाद है। दस रहे भाई सुखजीत सिंह कुहाड़का हजूरी रागी सचखंड श्री हरिमंदर साहब, साड़ी सेवा लगी है आनंद कार्ज की मर्यादा निभाने की। सो सतगुरु मेहरामत करन, ये साढ़े सारिया वालों ये शीस है, दोवां परिवारों में परस्पर प्यार बख्शन, बच्चों को गृहस्थ जीवन के सारे सुख सतगुरु जी की झोली में पाउन। आओ सारे मिलकर दोवें शब्द पढ़ के फिर आप समाप्ति कर

जानो त्यों मोहे रखो। मोहे मछली नीरा तुम, मोहे मछली तुम नीरा, तुझ बिन क्यों सर, मोहे चात्रक तुम बूंदा, त्रिपताओ मुख पराए।

मारी होए गताए। चीत चितव मिट अंधारे ज्यों आस चकवी दिन चरै। नानक ब्यम पै प्रयो संग मेली मछली नीर ना विसरै। तन तन हमारे पाग कर आया फिर मेरा। सो है बंक द्वार सगला बन हरा। हर हरा स्वामी सुख गामी अनद मंगल रस कणा। नवल नवतन नाहो बाला कमन रसना गुण पणा। मेरी सेज सोही देख मोही सगल सहसा दुख हरा। नानक प्यंपै मेरी आस पूरी मिले स्वामी अपरंपरा। बलाबल महला पंजवा शंत मंगल।

चरण रसना राम प्रभ भगत वचरण सिवई काया काग्रसना राम काया काग्रसना राम ब्रह्मोहि दुख ना जानई कोट जूनी पसना राम नानक बिना रवर जे चाह नाम पिष्टा कृम पसमा राम लाए बिरह भगवंत संगे होए मिल वैरागन राम चंदन चीर सुगंध रसा होमे बिख त्यागन राम ईते उतना डोली आए

जापरे सब उनका स्वामी राम। रास पिन्हड़े अपने राम संगे से लोयन जी के राम, प्राप्य गति इच्छा पुनिया मर साजन जी के राम, अमृत रासर पाया विख्या रस फीके राम। नानक जल जले समाया

सतगुरु प्रसाद सलोक महला चौथा। हरि उत्तम हर प्रभ गाविया कर नाद बिलावल राग पदेस गुरु सुन मन्या तुर मस्तक पूरा भाग सब दिन सरहण गुण उचरै हर हर हर उर लिवलाग सब तन मन हरिया होया मन खिड़िया हरिया बाग अज्ञान देरा मिट गया गुर चानन ज्ञान चुराग जन नानक जी वे देकार एक निमक कड़ी मुख लाग महला तीजा बिलावल तब ही कीजिए जब मुख होवे राम रागनाद शब्द सोहणे जान लागे सहज ध्यान राग नाद छोड़ हर सेविया तां दरगे पाईए मान नान गुरमुख ब्रह्म बिचारिया चूके मन अभिमान पौड़ी तू प्रभ तू हर प्रभ आप अगम है सब तो देव पाया तू आपे आप वरत दा सब जगत सुभाया तुदे आपे ताड़ी लाई है आपे गुण गाया हर त्यावो भगतो दनसरा अंत लय छुड़ाया जिन सेवया तिन सुख पाया हर नाम समाया श्लोक महला तीजा। दूजे भाई बिलावल ना हो वही मन मुख थाए ना पाए पाखंड भगत ना हो वही पार ब्रह्म ना पाया जाए मन हट कर्म कमावने थाए ना कोई पाए नान गुरमुख आप बिचारी है विचों आप गवाए आपे आप पार ब्रह्म है पार ब्रह्म वस्या मन आए जमन मरना कटे आ ज्योति जोत मिलाए महला तीजा। बिलावल करो तुम प्यारे हो एक स्यों लिवलाए जन्म बरंदो कटिए सचे रह समाए सदा बिलावल आनंद है जे चले सतगुरु पाए।

सत संगति बह भाओ कर सदा हर के गुण गाए। नानक से जन सोहणे जे गुरमुख मेल मिलाए पौड़ी। सभना विच सभना जिया विच हर आप सो भगता का मित हर सब कोई हर कै वस भगता कै आनंद घर। हर भगता का मिली सरबत सौ निसल जन टांग धार। हर सभना का है खसम सो भगत जन चेतकार तुध अपड़ कोई न सके सब झक झक पवे झाड़। श्लोक महला तीजा। ब्रह्म बिंदे ते ब्राह्मणा जे चले सतगुर पाए

इस युग में विरले ब्राह्मण ब्रह्म बिंदे चित लाए, नानक जिनको नदर करे हर सच्चा से नाम रहे लिव लाए महला तीजा।

संसारें आपे उदरें कुल सगल उनस्तारें हर का नाम रखें गुरु धारें नाम रतें भोजन उतरें पारें सतरु सेवें सदा मन दासा होमे मार कमल प्रगासा आंदन बाजे निज कर बासा नाम रते कर मह उदासा सतरु सेवें तन की सच्ची बाणी।

माया मोह बुधावें। तो हर जन हर हर बोलताम, हर बोल सुख पावें। बिख सोचे हट बाणिया, वह हाट कमावें। मोह झूठ पसारा झूठ का, झूठे लपटाहे। तो हर जन हर तन सचिया, हर खा चलै जाए।

हर दयाल कर कृपा बख्श युव गुण सब मेरे रहा। कुछ रूप नहीं कुछ जात नहीं कुछ ढंग न मेरा। क्या मुलह बोलो गुण बहून नाम जपया ना तेरा। हम पापी संघ गुर उभरे बन सतगुर के रहा। सब जियो पिंड मुख नक दिया बर्तन को पानी। अन्न खाना कपड़ पहनन दिया रस ज्ञान पुगाणी। जन दिए सो चेतना भी पशु हो कर जानी। सब कीता तेरा वर्तदा तू अंतर जामी। हम जंत बिचारे क्या कहूं सब खेल तुम स्वामी। जन नानक हट

तन सेती राचे सतगुर वचन दियो अंत निर्मलो जप हर हर हर मन माचे राम मेरा मन तन भेद लियो हर साचे जय काल के मुख जगत सब ग्रासिया गुर सतगुर के बचन हर हम बाचे रहो जन को प्रीत नहीं हर्ष

कहो के थिंग हर पैन असी गैंग हर का पे बख्श लें प्रभु सच्चांग हर का पिछड़ाए छुट गैंग मेरे मन जापूंग हर हर हर मन जपिए सतगुरु की सरनाई भज पाओ मेरे मना गुर सतगुर पेशा छुट गए रहा मेरे मन सेवो सो प्रभु सर्व सुख दाता जय सेविए निज घर बसिए गुरमुख जाय लहो करी अपना कस चंदन हर जस कसिए मेरे मन हर हर हर हर जासी उत्तम लै लाहा हर मन रसिए हर हर आप दया कर देवे त अमृत हर रस चाखिए मेरे मन नाम बिना जो दूजे लागे ते साखत नार जम घुटिए ते साखत चोर जिन्ना मन बसिया मन तनके निकट ना भेटिए मेरे मन सेवो अलख निरंजन नर हर जित सेविए लेखा छुटिए ज नानक हर प्रभु पूरे किए किन मासा तो

धर्मांतर दिया मन ठाणे राम हम सतंग हम हमरे मचक दुगन्नांग हम कार्य गुरु बांडेंग परविकार विपन्न बाकिया पौधोत्तर दार बनांडेंग जन को प्रीत दिंग हर नाही तन कूरे कटन कांडेंग जो प्राणी कागदों बिन सुजात है तो मन होकर गुलंडेंग।

तां कर्म खजिंदु जापना अकर्मा मात मता मात जियो नाम खुरामा संतोख पिता कर गुरु पुरख अजन्मा बड़ पागी मिल रामा गुर जोगी पुरख मिलिया रंग माणी जियो गुर हर रंग रतला सदा नर बाणी जियो बड़ पागी मिल सुगुड़ सजाणी।

सो गुरु जाने सास कहे सो बिखाए सुमाने जाने नहीं जीते रहारू एवले वसा के संसार सो जो हल्ला हल सो पीवे बौरा

वंदन अर्पित सेव करे जय कावन सो जुगत जत कर पी जय पाय लगो तज मेरा तेरा कवन सो जन जो सौदा जो रह मल सा काकन पावे कवन सो भेद जत पितर बोलावे तू बड़ साजा के कोट बनजारे कवन सुदाता ले संचारे खोज खोज निष्कृपाया मोर रतन साच दिखलाया

कोदाना सरे संगा ठाकर नाम की अनुवर्तन त्रैवतया घामन हर काय दर्शन हर संग रात मानतानु हरे गुरुपुर।

पंचमां व्यापत हर्ग शोक विस्तार व्यापत स्वर्ग नरक अवतार व्यापत तन निर्तन पैक शोभा मूल व्याधि व्यापत लोभा माया व्यापत भाव परकारी संत जिमे प्रभुट तुम्हारी रहो व्यापत हो बन का माता व्यापत पुत्र कलतर संग राता व्यापत हस कोढ़े आर बस्ता व्यापत रूप जो बन मध मस्ता व्यापत भूम रंग अर रंगा व्यापत गीत नाद सुन संगा

ताय शीतल स्थान गुरते प्रजा तेरा सन प्रसाद प्यार नाव सन प्रसाद कीर्तन गाओ सन प्रसाद सगल दुख मिटे सन प्रसाद बंधन ते छूटे संत कृपा ते मिटे मोह परमा

परवासा जाकी प्रे सदा सुख होए नानक गावे गौर मिल सोए गौड़ी महला पंजवा मीत कर सोई हमाना मीत के करतव कुशल समाना कट को मेरे मन चीत जैसे किच करना सो हमरा मीत राह मीत हमारा वे प्रवाह गुरु कृपा ते मोया सुनाहा मीत हमारा अंतर्धाम समर्थ पुरख पार ब्रह्म स्वामी हम दास तुम ठाकुर मेरे।

तिथे प्राप्त जस मस्त भाग कौ नान तक जरणी लाग गौड़ी महला पंचमा सुख हर किए माए अमृत दृष्ट संत जीवाए काट कत पूरे गुरुदेव सेव को दिनी अपनी से राव मिटे मिट गई चिंत पुने मरे आशा कर दिया सदगुरु गुणता सा दुख न ठय सुख आय समाय टेल न परि न गुरु फरमाए इच पुनि पूरे गुरु मिलाए नानक जन नानक ते जन सुफल फले गौड़ी महला पंच

नित प्रत नावन राम सर की जय। चोर महारथ वर अमृत बिदराव निर्मल दुख गोविंद का नाम मदन करत पूर्ण सब काम।

मैम। नेत्र प्रकाश किया कर देव परम के पूर्ण पैसे बरा चित्रा तेरा क्या बे हरे पाप पर कृपा तारे नानक नाम तो पैसो जी बैसा।

बिन नामे को मुक्त ना होए, जुग चारे नाम उत्तम शब्द विचार, कल मैं गुरमुख उतरस पार, साचा मरै न आवे जाय, नानक गुरमुख रहे समाए, गौड़ी महला तीजा, गुरमुख सेवा प्राण अधारा, हर जी राखो हृदय उर तारा, गुरमुख शोभा साच द्वारा, पंडित हड़ पड़ तजो वेकारा, गुरमुख पौजल उतरो पारा रहाव, गुरमुख विचों होम जाय, गुरमुख मैं न लागे आए, गुरमुख नाम से मनाए, गुरमुख का

दुख सुख ए बाद जनाहन ते तुम जानो ज्ञानी नान बताए तुम मानो जो ए बद को जो प्राणी गौड़ महल्ला नामा